0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

बोधि तनूकृत तनूकृद्बोधि तनूकृदिति तनूकृत बोधि प्रमतिश्च च प्रमतिर्बोधि बोधि प्रमतिः प्रमतिश्च प्रमतिर्।

विदुष्टरः विदुष्टरोदिशः प्रशास्सि पाकम् पाकम् शास्सि शास्सि प्रदिशाः दिशो विदुष्टरः विदुस्तर इति विदुहूतरः ॐ ॐ एतेनाग्ने अग्न एतेन एतेनाग्ने अग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व ववृधस्व ब्रह्मणाग्ने अग्ने ब्रह्मणा ब्रह्मणा वावृधस्व वावृधस्व शक्ती वायत् यद्वा शक्ती वावृधस्व वावृधस्व शक्ती ववृधस्वेति ववृधस्व।

ते चक्रमा विदा वा वेति वा उत प्र प्रोत उत प्र प्रणेष्यभि अभिनेषि प्र प्रणेषि नेष्यभि अभिवस्यो अस्मान्सम् समस्मान्वस्यो अभि समस्मान्वस्योभि अभिवस्याः वस्यो अस्मान् अस्मान्सम् सन्नसृजसु मत्या वाजवत्या वाजवत्या सुमत्या सृज नस्सम् सन्नाः नसृज सृजसु मत्या सुमत्या वाजवत्या सुमत्येति सुमत्या वाजवत्येति वाजवत्या ॐ ॐ यदिन्द्र इन्द्रयत यदिन्द्र इन्द्रा।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: நலம் திருப்பெருந்துறை அருளியவர் மாணிக்கவாசகர்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।